0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: आकाशवाणी कोयम्बतूर FM 103 इसे ओड़ी एंड्रम नींगल।